0: What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: S&S Lawyers को इन्ना सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000
5: जी तुसी भी करना चाहुने हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो पंजाबी लहरां दे किसी भी प्रोग्राम दी फीडबैक देण दे लई कॉल करो 647-504-1557 या मैसेज करो पंजाबी लहरां दे इंस्टाग्राम पेज ते जी तुसी भी करना चाहुने हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता अज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो पंजाबी लहरां दे किसी भी प्रोग्राम दी फीडबैक देण दे लई कॉल करो 647-504-1557 या मैसेज करो पंजाबी लहरां दे इंस्टा

हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी
1: 905-459-5533 905-459-5533
2: PNJ Spring Wheel Alignment।

0: एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स, कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
1: इंश्योरेंस किसको करवांदा यार?
2: मैं कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी।

0: Country530.ca.
1: अज ही डाउनलोड करो पंजाबी लहरां दी ऐप PUNJABILEHRAN। जे तुसी साडी ऐप डाउनलोड कर चुके हो ता उस नू अपडेट भी जरूर करो।
2: अलोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: कला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी

हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स, कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
1: इंश्योरेंस किसको करवांदा यार?
2: मैं कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना।

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475041557 Tech Spirit

0: के देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
1: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
2: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
3: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ ਤਗੜ ਦੇ ਨਾਲ।
1: Disclaimer, the content shared on this radio show is for informational and entertainment purpose only. The hosts are not liable for any actions taken by the listeners or callers based on the information provided. Enjoy.
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6476702 2023 6 47 702 B23 license number 10394।
3: मैं नवा कार लिया, तेनू पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, एक भाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचदा वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए।
4: हो जी, एदे च समझण वाली केड़ी गल है, सारे कमां लई इक्को जगह। चलो मिसेस अगा स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते, इना दे प्राइस ते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकदा। तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो, सारे ब्रांड्स ते ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने। मिसेस अगा स्टील दी अप्लायंस जंक्शन, कॉल 905-450-0054 905-450-0054।

0: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए ओई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशना ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਗਨਦੀਪ ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਐਲ ਸ਼ੇਪ

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: आप पंजाबी आ गए
2: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-13

काश काश काश मेरी भी हर सुबह इतनी ही खास हो, काश मेरी भी हर सुबह इतनी ही खास हो, मैं खोलूं आंखें अपनी और तुम मेरी जान बस मेरे पास हो।

0: 10 6 4 7 7 3 9 8 7 1 0.
1: www.ritiglass.com
2: चिंटू पुत्र।
3: हाँ जी मैडम जी।
2: चल बेटे आज दा विचार दस।
3: आज दा विचार है मैडम जी कि असी भारतीय लोग हेलमेट पाइए भावे ना पाइए पर फोन ते स्क्रीन गार्ड जरूर लवाने।
2: ओ क्यों?
3: सिर भावे पाड़ जे खून भावे बह जावे पर मोबाइल ते खरोच नहीं होनी चाहिदी।
2: फिट्टे मुँह तेरे।
4: मिस्टर राज, तुम्हारे ते चोरी का इल्जाम है। तुसी इत्थे अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते। यू मे गो नाउ।
5: नहीं नहीं,
4: तू चोर है। धोखेबाज है।
5: कंपनी ना धोखा दे। चोर है तू।
6: क्रिमिनल डिफेंस लॉयर स्टेटन लॉ प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन दे करणदीप साही। बेल हियरिंग, ड्रंक ड्राइविंग, घरेलू झगड़ा, चोरी का केस या कोई भी कानूनी उलझन च फंसे होवो, तुहाडा अपना क्रिमिनल डिफेंस वकील स्टेटन लॉ प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन दे करणदीप साही। जाने अनजाने विच होए जुर्म लई तुहाडे हक लई तुहाडे नाल खड़े ने। मेफील्ड एंड एयरपोर्ट। कॉल 6478715000 6478715000।
7: इंडियन फ्रूटलैंड, वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स।
8: ले इको जगह तू किथे सारा कुछ मिलदा। दो चीजां लई एक जगह रुको, फिर अगलियां दो दी दूजी जगह रुको।
7: इंडियन फ्रूटलैंड है सच्ची वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स। सब तो वधिया ग्रोसरी, सब तो वधिया प्राइसेस ते आज ही पहुंचो। हुन इंडियन फ्रूटलैंड दी 7वीं लोकेशन भी खुल गई है ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे नियर होरांथ्रो स्ट्रीट ब्रैम्पटन।
9: पूरे 40 साल हो गए अपने व्याह नु, फिर किथे सेलिब्रेट करन दा इरादा है?
10: मेरी मन्नो आपा पिंड ना चलिए।
9: धर्म नाल आ ता तू मेरे मन दी गल ही कहती है, पर इन्नी छेती टिकटा कित्थों मिलन गया?
10: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वार गई साथ है उना दा, अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 साल तो
9: बेदाग सर्विस।
4: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल,
10: क्वालिटी सर्विस, बढ़िया रेट्स ते बेस्ट डीलिंग है उना दी पहचान। इंडिया पाकिस्तान या दुनिया दे किसे भी कोने च करना होए ट्रैवल,
4: सर्विंग कनाडा नेशन वाइड।
10: 9056718400 और 9057968800 और विजिट giltravels.ca।
11: देखो जी, एक ते मच्छी हुंदी है जिहड़ी पानी च रहिंदी, ते दूसरी मच्छी हुंदी है जिन्नू वेख के मुंह च पानी आ जांदा है। इंडियन स्वीट मास्टर तो मिल जाए आज ही चक लो।
10: कॉर्नर ऑफ मैकलॉकलन एंड रे लॉसन। कॉल 9054502800।
12: नाउ ओपन टिल 2 AM।
13: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world.

गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के किरण जी वतन दूत तुहाडे लई पेश करनगे और मनप्रीत जी इंडिया तो खबरां पेश करनगे। हुण तो लैके 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर रहणगे 905-799-0999 905-799-0999। सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है। अज सूरज सिंह 557 दे कानूनी तौर ते बाहर आया ते 8:30 ते चले जाना। मामा चांसे सवेरे सवेरे आ गया जे 1:58 ते रात नू 11:09 इन्हें जाना है। अज सारा दिन सूरज चमकण दे आसार नजर आउंदे ने। तापमान 16 डिग्री और कल नू 17 डिग्री, लेकिन मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, बारिश दे नाल झखड़ झोले ते थंडर स्टॉर्म आउणगे। थर्सडे नू 15 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, फ्राइडे नू 20 डिग्री दे करीब होगा सूरज चमकेगा, सैटरडे नू 20 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, संडे नू 19 डिग्री सारा दिन सूरज चमकदा रहेगा। नाल दी नाल 35 मिलीमीटर जिहड़ी बारिश है पैण दे आसार नजर आउंदे ने सदर्न ओंटेरियो दे अंदर। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32 55 80
2: अजकल किसी भी चीज च वैल्यू नहीं मिलती, साडियां आइलां विच वैल्यू मिलूगी।
3: ओ किदा
2: जिथे तुसी सिर्फ 22.49 विच हेलमंस मेयोनीज 4 लीटर क्लब पैक खरीदो ते 3000 पीसी ऑप्टिमम पॉइंट्स हासिल करो।
3: और पीसी ऑप्टिमम है पर बिजनेस मेंबरशिप फीस
4: बिल्कुल जीरो।
5: तुसी हो कौन?
2: होलसेल क्लब जिथे फूड सर्विस मिले वैल्यू नाल। और जानकारी लई स्टोर विच वेखो।

0: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर के इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई।
3: लेनियां होन या चार, बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: आप पंजाबी

0: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
2: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
1: भैया ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
2: कॉल करो 905-874-9878।
3: ओ आज तां कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदों ही बनू जदों नवे अप्लायंसेस आउणगे। मैं गया लाइन नी गल, उसने वेले गड्डी चक्की ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूरे ले जा खड़ी करती।
4: जी हां, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस दे। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी। 905-450 अठाई अठाई।

0: ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਕੁਛ ਹੈਲਪ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ।
1: ਹੈਲੋ,
0: ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀਰੂਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ।
0: ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਸੌਖੇ ਆ ਸਾਰੇ।
1: ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਂਡ 2-3 ਘੰਟੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੀ ਆਰ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀ ਆਰ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸਮੇ ਲਾਈਕ ਜੁਲਾਈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਾ ਪੋਰਸ਼ਨ 50% ਹੈ ਟੋਟਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਔਰ ਇਸਮੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਏ ਹੈ, HVAC ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਮ ਡੀਲ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸਮੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਕੀ ਜੇਬ ਸੇ ਪੈਸੇ ਜਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੇ ਲੀਏ।
0: ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਆਪਕੀ ਜੇਬ ਮੇ ਸਿਰਫ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਜ ਕੇ ਡੇਟ ਮੇ ਸਭ ਸੇ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਗਰ ਆਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਕੋ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੇ, 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1,00,000। और जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर आपने आज एनरोल करा तो विद इन 30-90 डेज में आपके अकाउंट में पहली किस्त आ जाती है गवर्नमेंट से डायरेक्ट।
0: अच्छा,
1: अब इसमें से कॉलेज की भी फीस ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कट करके आपके अकाउंट में देती है पैसे।
0: एक मिनट, तुसी कहने हो कि जे आपा एनरोलमेंट आज कर लेने हैं ते इहदे नाल की आ ए जिहड़ी गवर्नमेंट वालों ग्रांट आ जिहड़ी उह तुहाडे अकाउंट विच 30 तों 90 दिनां दे विच आ जाणी है, ते कॉलेज की फीस तुसी कुछ नहीं पे करनी, ते ऑनलाइन क्लासेस चाहे बंदा ट्रक ते आ, चाहे घरे आ, चाहे जे इंडिया भी गया है कि जाना पै रहा उहनूं, उह जिथों मर्जी बैठा ला सकदा।
1: बिल्कुल जी, सौखे जे कोर्सेज ने एंड फुली ऑनलाइन ने, कोविड के बाद से मिनिस्ट्री ने अलाउ कर रखा ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, और गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स ही हैं। सो मतलब अगर आज आपके काम में फंडिंग गिर, अगर आपकी ईयरली फंडिंग, अगर हस्बैंड वाइफ को फंडिंग गिर रही है $80,000, कॉलेज की फीस आप मान ले हैं $1,100 है कॉलेज की फीस, तो गवर्नमेंट जब आपके अकाउंट में पैसे डालेगी तो 1,100 पहले माइनस करके डालेगी जी।
0: ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ 80,000 ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ $1,00,000, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ 50,000 ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਲੱਖ ਹੋਈ ਤਾਂ 50,000 ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ?
1: ਅਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਈਵ ਮੇ ਅਪ ਟੂ 100,000 ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ, ਠੀਕ। ਅਬ ਇਸ ਮੇ ਸੇ 50,000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 50,000 ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਹੈ 0% ਪੇ। ਇਸਮੇ ਜੋ 50,000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਸੇ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਆਪਨੇ 20,000 ਫੀਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੀ, तो इनको 80,000 की फंडिंग घर लेके गई गए, और इनके मतलब ये जेब से कुछ नहीं लगा, इनके अकाउंट में $80,000 गिर रहा है, और इसमें से 30,000 क्या है ग्रांट वापिस ही नहीं करना, और जो लोन है 0% पे, और 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना, 10 साल की किस्तें बन जाती हैं, जब इंटरेस्ट रेट 1.5 साल बाद क्या है, शुरू में तो जीरो है, 1.5 साल बाद क्या है 2.5% पूरे साल का, मतलब जो 50,000 इनके पास आया है उसका सिर्फ $65 ब्याज है हर महीने।
0: ਇੱਥੇ 11% ਤੇ 12% ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਾਰਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 28% ਤੇ ਲੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਕੀ ਘਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ?
1: ਦੇਖੀ ਜੀ, ਇਨ ਦੇਸ਼ੋ ਮੇ ਜਿਸਕੀ ਇਨਕਮ ਕਮ ਹੈ ਵਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, इन देशों में, कनाडा से देश में, राइट। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, उनको अच्छा बेनिफिट है। अगर आप मुझे कॉल करेंगे आपकी इनकम 100,000 है तो आप मुझे कॉल नहीं करें, क्योंकि वी कांट हेल्प यू। अगर आपकी इनकम $70,000 से कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट में 2024 में, तो ही आपको इसका फायदा है जी। अभी हमारे पास 5 कॉल आई, 5 की इनकम $100,000-$70,000 है, वो हमारे लाइक हमने सीधा मना कर दिया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, तो ही आपको इसका बेनिफिट है। डॉक्यूमेंट का लगते हैं नोटिस ऑफ असेसमेंट गवर्नमेंट में पहले के पास है, मैरिट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के। क्यों? फंडिंग अगर फैमिली साइज ज्यादा है, किड ज्यादा है, फंडिंग ज्यादा आती है किसके अकाउंट में? मेरे नहीं, आपके अकाउंट में। डॉक्यूमेंट भी क्या लग रहे हैं जी, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिट सर्टिफिकेट, इसमें क्या आप कारीगरी करोगे?
0: ना तो बंदा बर्थ सर्टिफिकेट की कोई डेट चेंज कर सकता, ना तुम कोई मैरिट सर्टिफिकेट की डेट चेंज।
1: और बड़ी सी बात, फीस कब देनी आपने? मेरे काम होने, हमारी फीस आपने अपनी ईमानदारी से काम होने के बाद देनी है। अगर इस सब लास्ट वीक 30 लोगों की फंडिंग उनके खाते में गिरी है तो मुझे 25 के पैसे आ गए, पांच बंदे फोन नहीं उठा रहे, तो मेरा नुकसान जरूर हो जाता है इस काम में। लेकिन हम, हमारी शांति रहती है, संतुष्टि रहती है।
0: अच्छा, जिथे मर्जी बंदा बैठा ओंटारियो दे विच, ओह सारे लिए ओह अप्लाई कर सकदा कितें भी बैठा होवे ओंटारियो च?
1: हाँ जी, ओंटारियो में कई में बैरी है, हैमिल्टन है, हमारे क्लाइंट्स हैं जो आपका शो सुन के हैमिल्टन से आते हैं, हैमिल्टन से, बैरी से आते हैं। क्योंकि क्यों, रीजन क्या है? फुली ऑनलाइन कोर्सेज वो चूज कर देने।
0: जे बंदा हुन, जे बंदा विंडसर बैठा, उनू ए तो नहीं भी बार बार तुहाडे ऑफिस गेड़ा लाउणा पऊगा जां आउणा पऊगा, उत्थे बैठे बैठे
1: फुली ऑनलाइन कोर्सेज ने, ए टू जेड साल दा कोर्स है। एक बार भी तुसी लाइक सारा 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे अटेंडेंस तुहाडी लगनी चाहीदी है, एंड असाइनमेंट है कि एग्जामिनेशन नहीं है, कि कोई डाउट है तो हमारे ऑफिस आ भी सकते हैं। बहुत मत आते हैं लोग, कहते सर मैं लॉग इन करना सिखा दो, लॉग इन करने सीख जाते हैं, राइट। एज लिमिट कोई है नहीं, 40, 50, 60 ईयर्स के हमारे पास अंकल भी आते हैं, कहते जी बेटा ये लॉग इन करना सिखा दो हमें, ना कैसे लॉग इन करना है, आके सीख के जाते हैं, फिर पूरे टाइम क्लास लगाते हैं।
0: अच्छा, नंबर नंबर दो, साझा करो नंबर।
1: हाँ जी, नंबर है जी 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-31-75, नंबर अगेन 437-264-31-75, यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी, 2 मिनट एक्सपोर्ट बुलेवार्ड पे हमारा ऑफिस, हमारा ऑफिस

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000
5: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ